0: मेरा मतलब यह नहीं है कि ओदे कोल बह के रोना तो नहीं चाहिदा है या कथा कीर्तन या बाणी दा जाप ना होवे होना चाहिदा है, पर उन्हें आप भी ते जीवन विच कुछ कीता होवे ना। मुक्ति उन्हों तां मिलेगी जे उन्हें आप कुछ कमाया है। पहला मौत तो पहला मन मुक्त होया है ते तां मरण तो बाद जुना तो मुक्ति, ते मरण तो पहला वह बंदरां दे अंदर बजा रहा है ते हुण मुक्ति उन्हों मिले किवें, हुण वह बंदरां तो मुक्त होवे किवें। तो भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने मैं उन्हां दोहागणां नूं मनमुखां नूं पुछदा कि उन्हां दा जीवन किवें बीतिया जिन्हां ने सारी उम्र दे अंदर कदी परमात्मा दे नाल अपने मन दी सांझ पाई नहीं। इस श्लोक थोड़ा जिहा गहरा सी, मैं श्लोक नूं लैके तां तुहाडी सेवा दे अंदर कुछ बेनतियां रखण दा नमाना यतन कीता कि अज न सुती कंत स्यो अंग मुड़े मुड़ जाए। अगर बारी बारी अर्थ करोगे ते कुछ होर बनदे ने, गहराई विच चले जाओ ते अर्थ सही रूप दे अंदर उगड़ के तुहाडे सामने आ जाणगे। भगत फरीद साहब जी कहना की चाहुंदे ने, अंग मुड़े मुड़ जाए, मन विच बेचैनी रहिंदी, उस मन विच जिहड़ा मन रोज रोज जुड़दा है पर एक दिन किसे मजबूरी दे कारण नहीं जुड़ पाया, किसे कारण करके अज सांझ नहीं बनी परमात्मा दे नाल, मन दे अंदर चिड़चिड़ापन रहा। जाए पुछो दोहागनी तुम क्यों रहन बिहाए, उन्हां दोहागना दा जीवन किन्ना दुखी होएगा, किन्ना बजर ते भारा होएगा, उन्हां दे जीवन दी रात किस तरह बीतदी है जिन्हां ने कदी पूरे जीवन रूपी रात दे अंदर परमात्मा पति नूं चेते नहीं कीता, परमात्मा दे नाल सांझ बनाउण दा यतन ही नहीं कीता। तो यह सी भगत फरीद साहब जी दे मुबारक बचन जिन्हां नूं आधार बना के कुछ बेनतियां आप संगत दे सन्मुख करन दा नमाना यतन। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी रहमत करन सबना दे मना दे अंदर गुरमत ज्ञान दी बख्शिश और अज्ञानता दा हनेरा दूर करन दी कृपा करन।
1: सहुरे ढोई ना लहै पिए नाही थाओ, फिर वातड़ी ना पुछई तन सुहागन नाओ। सोहरे पिए कंत की कंत अगम यथा, नानक सो सुहागनी जो पावे बेपरवाह, नानक सो सुहागनी जो पावे बेपरवाह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सत्संगी जनो, चल रही लड़ीवार कथा विचार आप रोज रोज श्रवण करते आ रहे हो। भगत फरीद साहब जी की मुबारक बाणी विचों अज जो श्लोक आप संगत दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए, सहुरे ढोई ना लहै पिए ना ही थाओ, दो थावां दा जिक्र भगत फरीद साहब ने बाणी विच फरमाया, एक सौरा घर ते दूसरा पेका घर। कहन लगे जिसनू सहुरे घर दे अंदर भी ढोई ना मिले, ढोई दा मतलब सहारा ना मिले, रहन वास्ते जगह ना मिले, पेके घर दे अंदर भी रहन वास्ते जगह ना मिले, वो जीव आत्मा आखर जाए किधर? क्योंकि बसियां जन्म लेंदियां ने, उम्र का कुछ हिस्सा गुजार दिंदियां ने पेके घर दे अंदर ते बाकी दा उम्र दा हिस्सा गुजारिया जांदा है सौहरे घर दे अंदर। जिदे पास पेका घर भी नहीं सौहरा घर भी नहीं तो फिर आखिर वो जाए कित्थे। कहन लगे सौहरे टोई ना लहे, हुण इस रमज नूं थोड़ा जिहा समझण दा यतन करियो। सौहरा घर बयान कीता है परमात्मा दे घर नूं, पेका घर बयान कीता है ऐस लोक नूं। साडी आत्मा नूं इह लोक भी छड्डना पिया, पर लोक दे अंदर परमात्मा पति दा घर मिलिया ना, ते फिर वह आत्मा जाएगी कित्थे। इह शरीर आत्मा नूं छड्डना पैंदा है। असि तीन चीजां दा सुमेल चल रहे हां, साडे पास तन है, साडे पास मन है, ते तीसरी साडे पास आत्मा है। तिन्हां चीजां दा सुमेल ही असि चल रहे हां। चलो मैं आरंभ दे अंदर एक होर बेनती करदा चला। तन दा अपना फल, मन दा अपना फल, ते आत्मा दा अपना फल वखो वखरे तिन्हां दे फल ने, और वखरियां वखरियां ही तिन्हां चीजां दियां गुलामियां ने, वखरे वखरे बंधन ने। तन दे बंधन वखरे ने, मन दे बंधन वखरे ने, आत्मा दे बंधन वखरे ने, तिन्हां दे रोग वखो वखरे ने। खैर जो मैं बेनती कर रहा सा, साडा तन तन नूं फल लगदा है औलाद पैदा करने। तन कोलों तन ही पैदा हुंदा है, होर कुछ भी नहीं। तियां दा जन्म हुंदा है, पुत्रां दा जन्म हुंदा है तन करके। मन नूं फल मिलदा है ज्ञान दा, और जद मन नूं ज्ञान दा फल मिल जांदा है, फिर इस तों अगे चल के आत्मा नूं फल लगदा है रब्बी रस दा, परमात्मा दे रस दा। जिस मनुख दे मन नूं ज्ञान दा फल नहीं मिलिया, उहदी आत्मा नूं रब्बी रस दा फल भी नहीं लगेगा। शरीर दे संबंध विच कोई प्रूफ पेश करना, कोई सबूत पेश करना कि शरीर हुंदा है, शरीर इस तरह दा हुंदा है, कोई लोड़ नहीं, क्योंकि शरीर अपना भी वेख रहे हैं, ते शरीर प्रकृति दे अंदर दूसरियां दा भी वेख रहे हैं। मन दे संबंध विच भी सबूत पेश करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि मन दे संबंध विच असी रोज रोज गल करदे नजर आ रहे हैं। अज मेरा मन मनदा सी मैं कुछ खा लवां, मैं बना के खा लिया। मेरा मन करदा सी गुरुद्वारे चला जावां, ते मैं आ गया। मन करदा सी अज गुरुद्वारे नहीं जाना, ते मैं नहीं आया। मन करदा सी अमृत वेले उठा, मैं उठ पिया। मन करदा सी सुता रवां, ना उठा, मैं नहीं उठिया। मन दी गल तुसी वार वार करदे रहिंदे हो, मन दी चर्चा वार वार रसना दे उत्ते आउंदी रहिंदी है। तन दा सबूत पेश करन दी लोड़ नहीं, मन दा सबूत पेश करन दी लोड़ नहीं। मन महसूस करन दा विशा है, ते तन इन्हां दो अखां दे नाल वेखन दा विशा है। नंबर तीन दे उत्ते बचदी है आत्मा। आत्मा ना ते वेखन दा विशा है, इन्हां दो नेत्रां दे नाल आत्मा दिसदी नहीं है। आत्मा ना मन वांग महसूस करन दा विशा है, आत्मा है केवल विश्वास दा विशा। हुण इह महसूस भी नहीं हुंदी, इन्हां दो अखां दे नाल दिसदी भी नहीं। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜਕਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਮਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਮ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਤੇ ਜੇ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਅਗਰ ਸਾਗਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗਿਆਨ ਯਾਫਤਾ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਖੈਰ ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿੱਚਰ ਵਸੈ ਸੁਹੇਲੜੀ, ਜਿੱਚਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ

गई कथूरी गंद जो बन जांदे ना डरा जे शह प्रीत न जाय फरीदा किती जो बन प्रीत बिन सुख गए कुमलाय फरीदा चिंत खटोला वान दुख

रख दियो, ओनू कहो भी बड़ा स्वादला भोजन है, होर खा। ओ छत्ती नाटक करदा है, छत्ती सवाल करदा है, दे विच नमक ज्यादा है, मिर्च घट है, खट्टा है, मिठा है, कौड़ा है, पर भुखा मनुख ते प्रश्न नहीं करदा। गुरु ग्रंथ से पातशाह दा एक वचन आउंदा है कि भूखे खावत लाज ना आवे। जद भुखा मनुख भोजन नू खा रहा है ते लाज कुलाज नू पिछे रख के खा रहा है। खुदियावंत ना जाने, खुदियावंत कहिंदे ने भुखे नू, खुदियावंत ना जाने लाज कुलाज कुबोल, कोई मैनू वेख के की बोलेगा, मेरे वास्ते की सोचेगा, भुखा मनुख नहीं सोचदा। और एक होर बेनती करा, भुख लगी होवे और दस्तूर होवे कि तुहानू नौकरां चांकरां दे हथों भोजन नहीं मिलना, कोई होवे राजा महाराजा अमीर शाहूकार होवे, पर किसे आश्रम दा ए नियम होवे भी इथों आप ही मंग के खाना पैना है, ते फिर भुख दा सताया होया एक बादशाह भी भिखारी दी तरह हथां नू बर्तन बना के मंगण वालियां दी कतार वे शामिल हो जांदा है। शेरे पंजाब महाराणा महाराजा रणजीत सिंह, उन्हां दे घर वाले महाराणी जिंदा, शेरे पंजाब दी मौत तो बाद नेपाल दे अंदर महाराणी जिंदा नू आप एक आश्रम विचों पतलां दे उत्ते मंग के खाना पिया। महाराणी जिन्हों रोज रोज नौकरानिया दासियां अगे पिछे घूमदियां नजर आउंदियां ने, सेवा करदियां नजर पैंदियां ने, अजाब मंग के खा रही है, क्योंकि भुख है ते मंग बनदी है, भुखी नहीं है ते फिर मंग भी नहीं है। अगर अंदर भुख है ते मंग बनदी है, अगर अंदर भुख नहीं तो मंग बनेगी किवें? धन दी समझ है, धन दी भुख है, धन दी मंग भी है। गुरु कोलों, पिता कोलों, दूसरे कोलों, तीसरे कोलों अगर धन की चाहत ही नहीं, धन की भुख ही नहीं, तो धन की मंग किवें बनेगी? तो धन नूं प्राप्त करने वास्ते फिर आप यतन पर यतन भी कदों करोगे? यतन भी तो ताई आरंभ करोगे ना, जे पहला अंदर भुख बनी है, उहदी प्राप्ति वास्ते फिर आप राह भी लभने शुरू कर दोगे, इस तरह मिलेगा। औलाद की भुख है, औलाद की मंग है, औलाद की भुख ही नहीं ते औलाद की मंग भी नहीं। तंदुरुस्ती की भुख है ते तंदुरुस्ती की मंग है, तंदुरुस्ती की भुख ही नहीं ते तंदुरुस्ती की मंग भी नहीं। जिस पदार्थ की तुहाडे मन दे अंदर भुख नहीं बनी, चाहत नहीं बनी, उहदी मंग भी नहीं बनदी, ते जद मंग नहीं बनी ते उहनू प्राप्त करन वास्ते फिर आप यतन भी क्यों करोगे? यतन ते ताई करोगे जे भुख बन गई है, चाहत बन गई। परमात्मा की भुख नहीं है, परमात्मा की मंग भी नहीं है। हां, परमात्मा कोलों मंग है, परमात्मा दी मंग नहीं है। बड़े ध्यान नाल मेरे इन्हां बोलां नूं समझना, परमात्मा कोलों मंग है ते मंग किसदी है? परमात्मा तो पुत्र दे, क्योंकि पुत्र दी भुख है। परमात्मा कोलों मंग है, परमात्मा तो धन दे, क्योंकि धन दी भुख है। परमात्मा कोलों मंग है परिवार दे, परमात्मा दी मंग नहीं कि परमात्मा तू ही चाहिदा है। तेरे कोलों दातां चाहीदियां ने, क्योंकि दातां दी अंदर चाहत है, दातां दी भुख है। तू चाहिदा है नहीं, क्योंकि तेरी समझ भी नहीं है, तेरी भुख भी नहीं है, तो फिर कित्थे है सिमरन मन दा कित्थे है? तो अर्ज मैं कर रहा सां कि खुदिया वंत ना जाने लाज कुलाज कुबोल। भुखा मनुख मंग के खान तो गुरेज नहीं करता, ये नहीं वेखदा कि लोग की कहणगे की नहीं कहणगे, खान दी करदा है, और उहदा कोई प्रश्न नहीं है। रज्जे मनुख दे बड़े प्रश्न ने, भुखे दा कोई प्रश्न नहीं है। कोई बंदा तीन दिन तो प्यासा है, अज दी विज्ञान ये गल कहिंदी है कि तकरीबन 40 दिन बंदा भोजन तो बगैर जिंदा रह सकता है, और तीन दिन पानी तो बगैर जिंदा रह सकता है। अज दी विज्ञान इस तरह कहिंदी है, कोई बंदा तीन दिन तो प्यासा होवे, पानी दी उहनूं इक बूंद मिली ना होवे, तीसरे दिन उहदे सामने एक गिलास पानी दा लेके चले जाओ, ते कि उह प्रश्न करेगा कि पानी खूह दा है, पानी टूटी दा है, पानी नलके दा है, पानी तालाब दा है, पानी दरिया दा है, पानी फिल्टर होया है नहीं होया, पानी नूं किसे ने झूठे मिठे हाथे नहीं लाए, उहदा कोई प्रश्न नहीं।
ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ

कितनी जोबन किन्ने जोबन किन्ने जोबन गए ने मेरे अज्ञानता दे अंदर पटकद्या पटकद्या टकरा मारद्या मारद्या किन्ने जोबन चले गए ने मैं जात पात दे बंधन दे अंदर बजदा रहा मैं ईर्षा द्वेष दे झगड़े उठाउंदा रहा निंदा चुगली दे अंदर चलदा रहा ते जोबन खिसकदा रहा समय ने ते नहीं टिकना समय नू तुसी संभालना है संभालो समा तां वी अपनी चाले चलदा है समय नू ना संभालो समा तां वी अपने चाले चलदा है अज दा दिन आया है चार पैर दा जीवन लैके इन्हें बीत ते जाना है किसे दा दिन सुकून दे अंदर ते किसे दा दिन रोंदिया धोंदिया बीतेगा किसे दा दिन हानि दे अंदर किसे दा दिन लाभ दे अंदर बीतेगा दिन ने बीत जाना गया होया दिन वापस लिया के मुड़ तो इनू खर्च करना इनू सवारना है साडे वस विच नहीं है गया सो गया इनू वापस मोड़ना साडे वस विच नहीं है तो समा जोबन दा जेड़ा आया है इन्हें चला जाना है जोबन दे समय दे अंदर अपने बाकी फर्ज पूरे करो गुरु साहबान रोकदे नहीं है गुरमत वरजदी नहीं है पर जेड़ा तुहाडा अपने लिए फर्ज है वह भी पूरा करो पातशाह सानू केवल चेता ही करा रहे हैं और भगत जी कह लगे जोबन जांदे ना डरा जे शह प्रीत ना जाए फरीदा कितनी जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए बड़े बारे जीवन मिलता रहा एते कर हम बहुत बसाए तब हम राम गर्भ होए आए बड़े बारे जीवन मिलिया जोबन मिलिया पर जोबन चला गया भगत रविदास साहब भी ऐलानिया अरदास कर रहे ने खुदावंद करीम दे सामने कि बहुत जन्म बिछरे थे माधो ते हुण जन्म मिलिया ते जोबन ते मिले गए कदी चलो मिल गया कदी ना मिलिया पर समझन वास्ते कह लिए जोबन बड़े मिले भगत रविदास साहब भी मिलदे जुलदे लफज वरत रहे ने ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਇਸ ਜੋਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਜੋਬਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਜੋਬਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ मेहरबान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र ते निकी गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों भगत फरीद साहब जी की रसना द्वारा उचारे हुए श्लोक दो श्लोक आप संगत दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए इन्हां दोहां श्लोकां दे अंदर ही बिरहा दा जिक्र है सब तो पहला बंदे दे मन दे अंदर मोह बनदा है मोह और मोह दी परिभाषा इस तरह कह लिए कि जो घर दी चार दवारी दे अंदर अंदर रहे उदा नाम मोह है घर दी चार दवारी दे अंदर अपना परिवार चंगा लगदा है दूजियां दे परिवार चंगे नहीं लगदे अपने बच्चे चंगे लगदे ने दूसरे दे बच्चे चंगे नहीं लगदे तो मोह खतरनाक तां है क्योंकि मोह दे अंदर अपना अपना लगदा है ते दूजे अपने नहीं लगदे तो जद दूजे अपने लगदे नहीं तो फिर किसे दूजे नूं उजाड़न लग्या डर भी किस चीज़ दा है जद कोई दूसरा अपना लगदा ही नहीं तो अपना नहीं ते फिर दूसरे दे नाल हमदर्दी भी कादी है मोह दे अंदर बंदा दूसरे नूं उजाड़ सकदा है अपने आप नूं वसाउण लई मोह दे अंदर बंदा दूसरे दे कारोबार नूं बंद कर सकदा है अपना कारोबार चलदा रखण लई मोह दे अंदर बंदा दूसरे बच्चे दे मूंह विचों भोजन खो सकदा है अपने बच्चे दे पेट पूर्ती वास्ते मोह दे अंदर दूसरे नूं दुख दे सकदा है अपने

जिन श्रिया तिने सुवारिया पूरी कोई करामात आप सृजन हारे तारिया सिखी अत संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया अटल अथाह अतुल तू तेरा अंत ना पारा वारिया जिनी तू सेविया पाओ कर से तुद पार उतारिया

ज्ञान त्यान किच कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। ज्ञान त्यान किच कर्म।

जियड़ा अग्न बराबर तपै पीतर वगै काती परनवत नानक हुकम पछाड़ै सुख होवै दिन राती परनवत नानक हुकम पछाड़ै सुख होवै दिन राती।

ज्ञान योग शब्द गुरु परमेश्वर जी दा खिरदा सगुरू सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों, आप जी ने हफ्तावारी जो विशेष दीवान सजदे ने अमृत वेले तो हजूर दी कृपा लै रहे हो, जो इस गुरु घर दी निता प्रति दी ए मर्यादा बन चुकी है, अमृत वेले सिमरन गुरुदेव जी दे बख्शे हुए नितनेम, उस तो उपरांत इलाही गुरबाणी दा कीर्तन, संपूर्ण आशा दीवार आप जी ने अज सरवण कीती, उस तो उपरांत इलाही बाणी दा कीर्तन होया। आओ सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी मेहर कर देन और आप साध संगत आशीष बख्शो, जो पिछले दो हफ्तियां तो आपने भाई साहब भाई गुरदास सुरां दी वार नू आधार बनाया सी कि गुरु के सिख दे लक्षण की ने, गुरसिखी दी निशानी की है, ते पिछे आपां विचार चुके हैं भाई साहब दे कुछ बचन कि धरती पैरां हेठ है, धरती हेठ वसंदा पानी, पानी चलै निवाण नूं, निर्मल शीतल शुद्ध प्राणी, बहुरंगी इक रंग है, सबना अंदर इको जानी, तत्ता होवै धुप विच छावै ठंडा विरती हानी, तपदा पर उपकार नूं ठंडे पर उपकार विहानी, अगन विहाए अगन बुझाए तपत विच ठंडा होवै दिल मना आनी, गुरसिखी दी एहो निशानी। भाई साहब दे बचन आपां इत्थों तक वाचे सन, सिख विच निम्रता पानी दी तरह, सिख निवान नूं जांदा जिवें पानी नीवें पासे नूं तुरदा, ते असी तीसरा लक्षण विचारिया सी कि गुरु का सिख जिहड़ा उह अपने अंदरों ते बाहरों निर्मल है, जिवें पानी निर्मल है इसे तरह सिख भी जिहड़ा उह निर्मल है। अगे जिहड़े आपां अज कुछ पॉइंट वाचने ने जां विषय, पानी शीतल है ते गुरु का सिख भी शीतल है। पानी जिहड़ा उह हर एक नूं शुद्ध कर दिंदा है, उह सब दी मैल धो दिंदा है, ते गुरु के सिख विच भी मेरे गुरु नानक ने इन्नी कु कृपा कर दिती, ए भी मैले मना नूं जे किते गुरु का सिख होवे पूरन उहदे कोल बह जाण ते मैलियां नूं निर्मल कर दिंदा है। जिवें पानी हर एक नूं अपने वल्लों सुख दिंदा है, हर एक रंग विच रज जांदा है, बनस्पति दे हर रुख दे अंदर पानी है, ते गुरु का सिख भी हर एक दे नाल मिलाप रखदा है। जिवें हर एक बनस्पति दे पत्ते विच पानी दी कृपा है, ते सिख हर थां ते निरंकार दी जोत नूं देखदा है। पानी धुप विच तपदा है, पर तपदा होया भी परउपकार करदा है, ते जदों गुरु के सिख अंदर भी किते शीतलता दे नाल गरमैश आउंदी है, ए भी तपदा है, ते ए तपदा होया भी भला करदा है। ते साहिब कहिंदे ने जे तपदा होवे ते तपदियां होया भी ए अग नूं बुझा दिंदा है। आओ अज इस पौड़ी नूं आपां संपूर्ण कर देणे, भावां कि इस संबंधी जितना समा मर्जी आपां विचार करदे रहिए, पूरी सिक्खी दी परिभाषा ही इस पौड़ी विच है। पर आउण वाले दिनां विच कलगी वाले पिता जी दे पुरब आ रहे ने, सतगुरु दे साहिबजादियां दे साके आ रहे ने, आपां ओह दिन भी जरूर वाचने ने। कृपा करो मेरे ते, आप समूह माई भाई आसीस बख्शो, एकाग्रता बख्शनी, गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं उस दिन अर्ज कीती सी कि भाई गुरदास कह रहे ने पानी निर्मल है।

अकाल मूरत अजूनी शैपंगुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच खैति सच नानक होशी सच

ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाहे मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों, अज धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज उन्हां दा प्रकाश दिवस आप जी मना रहे हो। अमृत गुरबाणी दा कीर्तन आप जी ने बड़ी भावना श्रद्धा नाल गुरमुखां तो श्रवण कीता है। आओ आप धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी दी टेक लैके बैठे हो। सतगुरु जी दे पावन पवित्र इतिहास और गुरबाणी दा जो सिद्धांत है, इस दी विचार आप संगत दे समक्ष अर्ज करनी है। एकाग्रता दी दात बख्शो। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह आप ही सिर ते मेर भरिया हाथ रख के भावना नाल अपने पवित्र बचना दी विचार आप ही करा लवो। करो कृपालता, गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी विचों भाई साहिब जी खुरानी कीर्तन दी समाप्ति ते जो अमृत बचना दा कीर्तन सरवण कराया है, धन गुरु अमरदास महाराज हजूर दे मुख तो उचारण कीती हुई अमृत बाणी राम कली राग अंदर आनंद साहिब दी एक पौड़ी दा कीर्तन आपने श्रवण कीता है। ते अक्सर ए पाठ आप जी अमृत वेले श्रवण भी करदे हो, पर धन गुरु अमरदास जी ने कृपा करके इस पौड़ी विच तीन बचन कहे। पहला बचन ते कीता ने के आओ इकट्ठे हो के अपने सतगुरु जी दी पवित्र गुरबाणी नू गायन करिए। शब्द वरते है सच्ची बाणी नू, ते नाल कृपा कीती भी जदो कोई सच्ची बाणी नू गाएगा अपनी रचना दे नाल, इस तो तुल इस तो उच्ची होर कोई बाणी नहीं, ते जदो भावना नाल इस गुरबाणी नू कोई गांदा है ते गुरबाणी सुन नाल गाउण नाल ओदे किरदे नू अमृत दी दात मिलदी। शब्द आपने सरवण कीता आवहो सिख सत गुरु के प्यारो, के आओ प्यारे गुरु के सिखो इकट्ठे होइए, ते नाल फिर कहन लगे गावो सच्ची बाणी इकट्ठे हो के उस करते दी उस निरंकार दी इलाही बाणी नू गाओ, सच्ची बाणी नू गाओ। ते शब्द वरत्या बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। हुण जदों इत्थे शब्द आ गया कि बाणिया सिर बाणी, बाणिया बहुवचन सारिया बाणिया विचों सिर दा अर्थ श्रेष्ठ श्रोमणी, कहन लगे सारिया बाणिया विचों श्रोमणी जो श्रेष्ठ है वह गुरु की बाणी। बाणी का आखरी अर्थ वैसे हुंदा है आवाज। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी ने कहा भी एक बाणी हुंदी है सच्ची, ते दूसरी बाणी ने शब्द वरते है कच्ची, ते गुरु अमरदास जी ने आनंद साहिब की बाणी विच ये दोनों पौड़ियां इकट्ठियां रखियां, एक पासे सच्ची बाणी ते दूजे पासे कच्ची बाणी। सच्ची बाणी जदों कोई सुनदा है ओदे हिरदे नूं अमृत का रस मिलदा है, ते जदों कोई कच्ची बाणी सुनदा है ते सच जानो ओदा अंदर

सब तहां विराजे, श्री गुरु ग्रंथ मंजी पर राजे, गुरु ग्रंथ साहिब मंजे ते ने, बाकी सारी संगत ते गुरु अर्जुन देव जमीन ते। देखो समा आया, हजूर ने देखिया भी गुरु ग्रंथ साहिब प्यार ने, ते गुरु का ग्रंथी, ग्रंथ का सेवादार ग्रंथी, मैं कर्ज करांगा गुरु के ग्रंथी सिंघां नूं भी। आवाज दूर दूर तक जारी होनी है, गुरु ग्रंथ साहिब दे सेवादार बनो ना के प्रबंधकां दे। खिमा करियो, वो तुहानूं खुद कहिंदे ने कि साडे नेड़े ना छड्डियो। आपां सोचिए भी इन्हां दी खुशामद करके गुरु नूं रिझा लांगे, सवाल भी नहीं पैदा हुंदा, पर यह भी नहीं इन्नी अहंकारी हो जाइए जने कने दी बेइज्जती करी जाए। दोनों पक्ष रखियो, कभी देखो ग्रंथी की तस्वीर देखनी है, तो भाई संत सिंह देखो, शेरे पंजाब रामबाग आए ने, अदब भी चाहिए। यह नहीं कि हंकार विच आके हर एक नूं इको रसे नाल बनी जाइए। रामबाग आए ने ते आके सुनिया कल्या भाई संत सिंह नूं कहो सानूं मिल, ग्रंथी साहब सन हरिमंदर साहब विच नाम ही लिखे मार्फत ज्ञानी संत सिंह सेवा कराई, एक कवाड़ उत्ते लिखे है। ते ज्ञानी जी उस वेले कथा करन जांदे पए सन हरिमंदर साहब दे अंदर, ते जदों गए ते जांदिआं परिक्रमा च मिल गया सज्जन, कहन लगा ज्ञानी जी महाराजा साहब ने तुहानूं सद्दिआ। ज्ञानी संत सिंह दे शब्द सन, कहन लगे एक गल सुनिआ देवी कि अज तो बाद कदी भी मैनूं उस वेले बुलाए ना जदों मैं अपने साहब दी सेवा विच हाजिर हुंदा होवां। चेते रखी ओ महाराजा है, ये महाराजन के महाराज है, ये पार ब्रह्म परमेश्वर का घर है। कहिंदा भी जो पिछा मुड़िया आवाज मार के कहिंदे जो मैं कह जाके कही जरूर, ये ना सोची भी चुप कर जाए भी की कहेगा, अंदर चले गए। अंदर कथा हरिमंदर साहब जो तो अंदर होंगी सी, चले गए जी जाके महाराजा रणजीत सिंह पुछदे ने जी किवें, उन्हें पूरी गल तो दस दी जाके। महाराजा रणजीत सिंह अज का हुंदा कहिंदा भी करो बर्खास्त, आज जी हटाओ इस ग्रंथी तो, लाओ इन तखत तो मेरा हुक्म। तो देखो निम्रता, सज्जन चलिया वो रामबाग तो नंगे पैरी, शेरे पंजाब हरिमंदर साहब की परिक्रमा में आंदिया समा लगा, ते जो अंदर आया तो भाई साहब कथा करके बाहर निकलते पे सन। शेरे पंजाब ने फतेह बुलाई, कह लगे मत्था टेक के आ पहला। अंदर मत्था टेक के बाहर आए तो अगे अगे भाई संत सिंह, पिछे पिछे भाई रणजीत महाराजा रणजीत सिंह। जो बाहर निकल गए ना ते भाई संत से कह लगे शेरे पंजाब हुण तू अगे तुर, मैं तेरे पिछे जाना। उन्हें कहा जी क्यों? कहिंदा उस घर का वजीर मैं हाँ, तू भिखारी है, उत्थे वजीर ने अगे तुरना, तू पिछे तुरना, हुण तेरे राज की हद आ गई, तू अगे तुर मैं तेरे पिछे चलना। किते चेतो रखो इना कुछ साडा सम तौल हो जाए। हजूर ने देखा भी ग्रंथी किनू बनाना है, केड़ा ग्रंथी होवे, ते असी भावे मैं आप ही ग्रंथी की सेवा करना कहण नूं आ, ग्रंथी दे बड़े उच्चे गुण जे। गुरु ग्रंथ साहिब का ग्रंथी, सारी रात इतिहास कहिंदा सोचदे रहे किनू बनावा। उन्हें इतों तक देखिया भी बेदियां दी कुल विचों कोई ले वेख लईए, क्योंकि उहदे सारे मिल गए सन, कोई भल्लियां विचों वेख लईए, कोई सोढ़ियां विचों देख लईए, कोई टेणां विचों देख लईए। अखीर से कहन लगे किते अंदर खौमे का बीज ना पुंगर पवे कि साडे बापूआं दी बाणी, किते ग्रंथ साहिब नूं छड के अपनी पैर पुजाण। सारी रात सोच के अखीर से इंद्री जित शब्द वरत्या, इंद्री जित जिन्हें इंद्रिया नूं जितया बाबा बुढ़ा साहिब उन्हां दे कोल जात लुटे। बाबा साहिब विश्राम तां करदे सन जमीन ते पै, गुरमुखो गुरमुख दा सौना साडे वर्गा सौना नहीं। हजूर कहिंदे कि वह सौंदे ने तां वी गुरु चलदा, सौंदे वाह वाह उचरे उठते पी वाह करेन। उत्थे कहिंदे ने बाबा बुढ़ा साहिब दा दुध वर्गा चिट्टा दाड़ा, सुत्या चमके मत्थे ते नूर, चरणा वल खलो के कहिंदे ने गुरु अर्जन देव ने शीश झुका दिता सी। कहन लगे चार गुरुआं दी सेवा कीती आ, तेरे तो वड्डा सेवादार कोई नहीं, जिन्हें कदी मैं नहीं जिताई। शुक्र किया वाहगुरु के गुरु ग्रंथ साहब का सेवादार ग्रंथी साहब ही मिल गए। उत्थे इतिहासकार ने दो पंक्तियां कही ने, वेख के शब्द वरते, कह लगे निज निज आसन सब ही बैठे, दया सिंध मन ऐसी बैठे। कह लगे निज मन ए विचारत भय, श्री गुरु ग्रंथ सेवक कह के।

चूमा कभी हलकुम, दहन चूमने बैठे जब गुरुजी पैंती आए तो सिंगों के चरण चूमने बैठे। कि वाकया गुरु चरण चूम सकता है? कभी पूछो गुरु गोविंद सिंह नु के की ये इतिहासकार ठीक कह रहा है? ते मेरा गुरु पुकार के कहंदा ठीक, ये झूठ नहीं कह रहा। मेरा साहब ता खुद पुकार के कहंदा है सेव करी इन्हीं की भावत, और की सेव सुहात न जी को, दान दियो इन्हीं को पलो, और आन को दान न लागो लाखनी को, आगे फला इन्हीं को दियो, जग में जस और दियो सब को, मोह ग्रह में ए दुनिया दे लोको मेरे घर भी जो कुछ है, मोह ग्रह में तन ते मन ते सिर लो, तन है सब ही इन्हीं को, मेरे घर का तन मेरा मन मेरा घर, कहन लगे मेरा सिर भी गुरु के सिंगो केवल तुहाडे वास्ते। जेड़ा गुरु ए बाणी विच कहे साहब सच्चे पिता सिंघा विचो निकले ने, ओ कहंदा दोनों साहबजादे ओ भी अज आराम पे करदे ने, ते आखर एक बाप है ना एक पिता है, किन्ने बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह दे तनु तके है, ते किन्ने उस वक्त सोए हुए बच्चों के सर को कहां पकड़ कर चल दोगे अब अब्बा को मुसीबत में जकड़ कर। ए पुत्र सवेरे तुसी चले जाने, मेरे तो ओथे चले जाने जिथे तुहाडे दादा जी विराजमान ने, सोए हुए बच्चों को कहा सर को पकड़ कर चल दोगे अब अब्बा को मुसीबत में जकड़ कर, थी जिंदगी लिखी हुई किस्मत में उजड़ कर, कहन लगे अब मिलने का वादा तो किए जाए बिछड़ कर। ए पुत्र एक बारी मिलन दा वादा तय करो, अगले बचन कहे बच्चों जितन आनंदपुर तो तुरिया सा थे चार हो अब दो ही, हुन दो रह गए हो, सहर जे भी ना होंगे दिन चढ़ेगा तुसी भी नहीं होना, हम शुक्र करेंगे अगर ये भी ना होंगे। मैं अकाल पुरख दा शुक्र करांगा मेरे पुत्र, जे तुसी भी चले जाओगे ते। अगली गल जड़ी हजूर ने कही, कहन लगे फुरमाते थे कल दोनों ही परवान चढ़ोगे, दुख भोगोगे हम हद में तुम चैन करोगे, होते ही सैर दागे जुदाई हमें दोगे। ते अगली गल कही बेटा सपने में आकर कभी खबर अब्बा की भी लोगे, हे बच्चों सवेरे चले जाने, होते ही सहर दागे जुदाई हमें देगे दोगे, कभी सपने में आके खबर अब्बा की भी लोगे। ए मेरे अजीत ए मेरे जुझार प्यारे, हम कहते हैं तू सुनते हो दिलदार प्यारे, मैं बोलना पया पुत्र कोई सुन दे, पुत्रा सुतियां नु आशीष दिती सिखां दे चरण चुमे, ते अज 22 दिसंबर दा ओ दिन चढ़िया है, शायद दुनिया दे इतिहास विच ना पहला सी ते ना आउण वाले समय विच आवेगा, जदों सूरज दी टिक्की निकलन तो पहला अज फिर नितनेम होए ने, आखा दीवार दे कीर्तन होए ने, पाठ कीते गए ने, ते उधर सूरज दी टिकनी टिक्की निकली ते हजूर ने जफरनामे विच कुछ जिक्र कीता चमकौर दी गड़ी दा, कह लगे आनंदपुर ए औरंगजेब मेनू अफसोस है, मेरे 40 भार भुखे पाने सिख ओ तेरे 10 लाख दी फौज, पर तेनू अपने गिरवान भी झाती मारिया लज्जा नहीं हुंदी? कहन लगे गुरसना चे कारे कुनद चेहल नर, मेरे 40 भुखे पाने सिख सन के 10 लाख बरायत बरो बेखबर, ते तेरे 10 लाख दा टिटी दल सी। सूरज दी टिक्की निकली, कहंदे ने उस वक्त सब तो पहला जरनैल नार खां आया। मैं कुछ मिनट कह के समाप्ति करांगा, नार खां आया ते कहंदे ने पौड़ी ला के चढ़न लगा, मेरे कलगी वाले ने पहला तीर पाया अपने कमान विच, पौड़ी चढ़दे नु तीर नाल विन के धरती उत्ते सड़ दिता है। दूसरा मुसलमान फिर पौड़ी ला के चढ़न लगा, ओदा नाम है गनी खां, ए ओ गनी खां नहीं जेड़ा माछी वाले वाला है, ए होर है, एदा नाम है गनी खां, हजूर ने उपरों गुर्ज मारिया, एदे सिर नू उन्हे इस तरह भन दिता है जिवें मानो मिट्टी दा भांडा पाईदा होवे, ए भी जमीन ते डिगा है। ते तीजा सी ख्वाजा मरदूद जिन्हों मोहम्मद अली भी कहिंदे ने, जदों दो डिगदे दिखे ने ते ए लुकदा होया दौड़ गया है, ते साहब ने जफरनामे विच क्या औरंगजेब दो नू मैं सद दिता सी, मेनू एक अफसोस के मरदूद जेड़ा अख बचा के निकल गया, जे किते पौड़ी लैके मेरे सामने आंदा ते एक तीर मैं ओदी छाती विच भी बख्श देना सी, ओ बच के निकल गया। हजूर कलगी वाले चमकौर दा जंग आरंभ होण लगा, ते सतगुरु ने जथे बना के तोरने आरंभ कीते ने, ए किवें अगे कौतक वापरदा है, ए आपां बुधवार दी शाम नू गुरु साहिब कृपा करन कोशिश करांगा।

एक बिन दुगण जो तो रहे जा सुमंतर मान वैल है जाल पाप दार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठ मिले कन हर बूंद बसोरू मावल कुसुम बसंत गणंत नयावै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर कै कब जन

परम सम्मान योग जुगह जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाई मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों हजूर दी पावन पवित्र इलाही बाणी दा कीर्तन और गुरमत विचारा आप जिया ने सत्कार योग भाई साहब भाई जगजीत सिंह जी खुरां पासों सरवण कीतियां ने कल दा दिन जो बतीत होया है कल दे दिहाड़े धन गुरु अमरदास महाराज तीसरे गुरदेव दा गुरगद्दी नशीनी पुरब सी ते गुरु अमरदास महाराज जी दे इस पुरब नूं आपां अज मना रहे हां। गुरु नानक साहब जी दे इस घर दे अंदर जदों आपां इतिहास नूं गुरमत नूं पढ़ने हां ते एक चीज बड़ी विलक्षण सानूं जिहड़ी नजर आउंदी है इत्थे गुरु दी किरपा ते निर्भर करदा है। 7 साल दा बजुर्ग बाबा भी जे किते गुरु के चरणा भी जुड़ के सेवा करे ते जिस समय लोग कहिंदे ने 70-72 साल दी उम्र विच बंदे नूं सूझ कोई नहीं शब्द वरतदे ने इह 70-72 गया। 12 साल गागर ढो के 72 साल दा बजुर्ग भी सिख तो गुरु बन सकदा है। यही विलक्षणता है कि इत्थे 5 साल ते 3 महीने की बाल उम्र गुरु हरकृष्ण साहब जी वह भी गुरु बन सकते ने ते कृपा गुरु करे तो 72 साल का बजुर्ग भी गुरु बन सकता है। आओ गुरु अमरदास जी दे पावन पवित्र इतिहास की और बाणी की विचार आपने करनी है जड़ा अज का दिन गुरगद्दी पुरब आप मना रहे हैं। इस दी विचार इस दिन दे संबंध विच गुरु कृपा नाल आपां विचारने कृपा करके जितने भी बैठे हो ना एकाग्रता जरूर बख्शिया जे। कोशिश करो इस खिंडे हुए मन नूं गुरु अमरदास जी दे चरणा विच अज टिका दईए। जे तां बुद्धि तारक केवल तर्क करन वाली नाल सुणांगे ते याद रखना वह कहया होया केवल तर्क दी बिरती वाला लगे।

0: सम्मान योग चवर तखत दे मालक परमेश्वर दा खिरदा स्वरूप सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान होए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों वडभागी हो इलाही गुरबाणी दे कीर्तन नाल सतगुरु नानक देव बाबा जी महाराज उन्हां दी बख्शिश कृपालता लै रहे सी। आओ जितने को सोज धन गुरु ग्रंथ साहिब जी मेहर करके बख्शनगे गुरु बाबा जी दे पवित्र जीवन और गुरबाणी दी विचार आरंभ करिए। विचार आरंभन तो पहला कृपा करके एकाग्रता बख्शो, बच्चियां नूं भी चुप करा के कृपा करके एकाग्रता दा दान बख्शिया जे। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने शब्द सरवण कीता है बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै सहज रंग रच रहया अहमिस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गया। ए शब्द दी रहाओ दी तुक सी। पहलियां पंक्तियां सन गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै कर करनी कस पाइए पाठी भवन प्रेम का पोचा इत रस अम्यो चुआइए। ते इस शब्द दे अखीर दी तुक सी कि गुरु नानक साहब एक जोगी नूं संबोधन कर रहे हैं। कहो नानक सुन भर थर जोगी, इहदा मतलब है शब्द किसे जोगी नूं संबोधन करके उच्चारण किया। पर चेते रखना यह शब्द केवल उस समय तक उस जोगी दे जीवन तक सीमित नहीं सी। यह शब्द अज भी गुरु के सिखां नूं एक चेतावनी दिंदा है ते नाम रस नाल जुड़न की प्रेरणा दे रहा है। शब्द असां सुने बाबा नानक जी नूं जोगी मिले है। इन्हें गल कीती है लिव दी, गल कीती है अनहद शब्द दी। ते जोगियां दे मत मुताबक उन्होंने प्याला भर के नशे का पेश किया, शराब का पेश किया। ते बाबा जी पुछदे ने ए की, कहन लगे एक वारी पी लईए ते परत के दिन चढ़े तक एदा नशा उतरदा नहीं। इनी टेक के समाधि लाई दिए कि शरीर नूं थकावट भी महसूस नहीं हुंदी। ते बाबा जी कहन लगे भलियो ए प्यार किवें कीता जे, ध्यान देना। कह लगे भांडे विच पानी पाया सी, पानी पा के विच गुड़ पाया, गुड़ दे विच किक्कर दे छक पाए ने, अमवे दे फुल पाए ने। पहला एक कच्ची एक कच्चा रस तैयार होया, परत के अग दी भट्ठी ते भांडे नूं रखिया ते इहदे चौगिरदे आपां भांडे उपर होर बथल फिट कीता, उहदे विच नाली लाईए ते भांडे उपर जिहड़ा बथल फिट कीता होर भांडा फिट कीता ते उहदे चार चफेरे असीं मिट्टी दा पोचा फेरिया ते थल्लों अग बाली ते जिहड़ा इहदा अरक निकलिया इहनूं असीं रस कहिंदे आ। इक वारी पी लईए ते रात भर इहदा नशा उतरदा नहीं। इशारा सी शराब वल। बाबा जी कहन लगे शराब दा नशा नहीं, ओ रस की होए जेड़ा शाम नूं पीता होवे ते सवेरे उतर जाए। ते कहन लगे मैं उस नाम रस दे प्याले नूं पी चुका हां ते इहो जिहा आनंद अंदर बन गया है कि चेते रखो ओदा नशा ओदा सरूर ओदा रस कदी भी उतरदा नहीं। ते जोगियां ने पूछया ए रस किवें तैयार हुंदा है। ते बाबा जी कहन लगे जोगियो गुड़ कर ज्ञान परमेश्वर दे बख्शे हुए ज्ञान नू गुण बनाया ध्यान कर पावे ओदे नाम विच ध्यान जोड़ना मैं इनू अमवे दे फुल बनाया कर करनी कस पाई है ते उच्चे आचरण नू किकर दे सत बना दिता है पाठी पवन आ शरीर नू पक्षी बना दिता है इस मोर दी मोर नू मैं साड़न तुरिया ना पाठी पवन तुसी मिट्टी का पोचा देंदे हो प्रेम का पोचा ते एदे विच्चों शराब नहीं एक रस अमेओ चुवाई है एदे विच्चों अमृत दिया बूंदा डिगदिया एक रस अमेओ चुवाई है कह लगे फिर बाबा हे जोगी मन मत वारो मन मस्त हो गया है नाम रस पीवे सहज रंग रस रोया एमस बनी प्रेम में लागी शब्द अनाहत गया एमस का अर्थ हुंदा दिन से रात एवो जिहा सुरूर ओह विचार है कि मेरे अपने अंदर ही वह शब्द सुनाई दे रही ए शब्द आप जी ने सरवण किया ते जे आप कह दीए भी ए कले जोगी वास्ते सी ते ध्यान रखो गुरु के सिखो बाबा नानक जी ने इस शब्द विच कले जोगी नू नहीं हर प्राणी मात्र नू कह जिस नशे पिछे तू जीवन बर्बाद कर रहे है इस नशे ने ना लोक सवार नहीं ना परलोक सवार नहीं ते कई बारी कोई सज्जन कहिंदे ने कि गुरु ग्रंथ साहिब विच शराब दे मुतल्लक कुछ बचन कीते ने हां बाबा अमरदास जी एक बचन करदे ने कहिंदे ने मानस भरिया आणे मानस भरिया आए जित पीता मत दूर होए बरल पड़ा विच आए अपना पराया ना पछाणी खसमो धक्के खाए जिदे तीन नाल अपने पराए की पछाण नहीं ओहो जे बंदे नू तां रब की दरगाह विचों भी धक्के पैंदे हुण गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी भगत रविदास जी का एक शब्द हुंदा नागर जना मेरी जात बख्यात चमारन उस शब्द विच इक तोके कहिंदे दुनिया ने सब तो पवित्र गंगा नदी नू मन्निया हिंदुस्तान दे लोगां नू पर भगत रविदास कहन लगे जेकर गंगा दियां लहरां दे पानी दी भी शराब कोई कड लै ते रब दी बंदगी करन वाला कदी ओहदे वल झाकदा भी उहनां दा बचन है सुरसरी सललकृत बारनी रे के जेकर सुरसरी दा अर्थ है तू गंगा दियां लहरां दी शराब बना लै सलल दा अर्थ है लहर सुरसरी सललकृत बारनी रे पर नाल कह दिता संत जन करत नहीं पावन सतगुरु गुरु साहिब जी ने ओ रस दिता जेड़ा रस नाम दा कदी उतरना नहीं खैर गुरु नानक साहिब महाराज जी दा पवित्र इतिहास आपां कल विचार कीती सी गुरु नानक बाबा जी ने सज्जन ठग तो सज्जन भाई बना दिता है अगे लोकां नू ठगदा सी अज एहो जिहा सज्जन बना दिता नाम दा व्यापारी बन गया गुरु नानक साहिब महाराज सज्जन तो बाद हर द्वार दी धरती ते पहुंचे इत्थे मेरे दाता जी ने कुछ एहो जिहा कौतक वरताए जेड़ी कई मुद्दतां तो उन्हां दी मनौत सी एक परंपरा बनी हुंदी सी ते पांडे ने मर्यादा बनाई सी ते गुरु नानक दे उस दलील ते नाम दी बरकत सामने कोई खलो ना सकिया हर द्वार पहुंचे ने अजे सूरज दी टिक्की निकल रही है ते लोग गंगा विच इशनान तय करदे ने ओ लोग तन नू तां धो रहे ने पर मन उन्हां दा दसी पासी धामदा पिया है तन धुपदा पिया पर मन धामदा है मन धुपदा नहीं मैं बेनती की धामदा दर से दौड़दा पे है पिंडे ते पानी पै रहा है पर मन ते उस पानी का असर नहीं ते कुछ कूने पानी दियां बुकां भरिया ने ते सूरज वल पानी पै सकदे ने ते बाबा नानक जी कहिंदे ने मरदानिया तू खलो किनारे ते आ देख पानी पै सिंजदे ने चढ़दे नू आपां वी अपने घर दा कोई सोचिए बाबा नानक जी पानी विच प्रवेश कीता ते लेंदे नू पानी झटना शुरू कर दिता पानी सिंजन लगे ते जदों बाबा नानक जी इकले लेंदे नू पानी सिंजदे पए ने हुण इन्नी भीड़ सी कहन लगे देखो आ बंदा कौन है ए हिंदू है ते जे हिंदू है ते चढ़दे नू पानी छड़ के लेंदे नू पानी दे रहा है। ते पंडे कोल आए कह लगे भलिया तू पहली बारी इत्थे आए है? कह लगे हां। फिर किन्ने तेनू पता नहीं पानी चढ़दे नू दईदा लेंदे नू नहीं? सतगुरु बाबा जी कहिंदे ने चढ़दे नू क्यों? कहन लगे कुछ तो सूरज नू पानी देंदे ने, कुछ अपने मर चुके पितरां नू पानी पै देंदे ने। बाबा जी कहन लगे पितर किन्ने कु दूर ने? उन्होंने करोड़ा को दी गिनती कीती ते बाबा नानक जी फिर पानी झटन लग पै। ते उन्हां कहा हे बाबा असी तेरे सवाल का उत्तर दे दिता, तुसी पुछया असी पानी किन्नू देने आ? असी सूरज ते पितरां नू पानी दे रहे हां, ते तुसी पानी किधर दे रहे हो? बाबा नानक जी कहन लगे मेरी धरती है लेंदे नू, जमीन विच फसल बीजीए। ते कई वारी साडे वीर कहिंदे ने बाबा जी ने कहा मेरी करतारपुर जेड़ी खेती सुकदी पई है। नहीं प्यारे अजे करतारपुर शहर बदा भी नहीं सी, करतारपुर ते सब तो अखीर विच बजा। कहन लगे लेंदे नू मेरी धरती विच बीज पिया फसल सुक रही है, मैं चाहना वा पानी चढ़ चढ़ के उस फसल नू भरपूर कर दिया। सारे हस के कहन लगे देखो एनी अकल नहीं, आ गंगा विचों पानी निकल के तेरे पैरां विच फिर परत के रुड़ के वापस आंदा है, एने को दूर पंजाब की धरती ते पानी पहुंचेगा? जा तेरी उस धरती ते जिथे तू फसल बीजी पानी अपड़ जाएगा? बाबा जी कहन लगे पंडा जी मैं ता अज पानी सिंजन आया, आ तुहानू किन्ना कु चिर हो गया पानी चढ़दे नू सिंजने आ? कहन लगे ते ता हर साल ही लोकी सिंजदे ने, जदों कोई यात्री आए ते पानी सिंजदा है। साहब कहन लगे पंडित जी जे तुहाडा सिंजिया होया पानी करोड़ां को दूर पितरां तक ते सूरी तक पहुंच सकदा है, ओ साडी धरती ते सैकड़े कुआं तेरे कि साडा पानी उस धरती ते नहीं पहुंचेगा? जे तेरा सैकड़े कुआं दूर हजार करोड़ां कुआं दूर ते साडा सैकड़े कुआं दूर नहीं जांदा? लोग हैरान हो गए, कहन लगे अज तक किसे ने सोचे ही नहीं, वाकई जेकर पानी पितरां तक पहुंच जांदा है ते ए पानी इस धरती ते नहीं पहुंच सकदा? ते सारे कोल आ गए, कहन लगे बाबा गल तां तेरी बिल्कुल दुरुस्त है, पानी पितरां तक पहुंचदा नहीं। ते चेते रखियो पितरां दा असी अर्थ करने आ जेड़े मर चुके प्राणी ने, जेड़े बजुर्ग चढ़ाई कर चुके ने। पर अज बाबा जी ने एक किवाड़ खोलिया उन्हां लोगां दा जेड़े जिउंदे जी तां बापू दे मुंह विच कुट पानी दा नहीं पाया, जिन्हां ने जिउंदे जी मां बाप नूं रोटी नहीं कदी अदब नाल दित्ती, ते मरन तो बाद गंगा विच खलो के चढ़दे नूं पानी सट के कहिंदे ने पितरां नूं पानी देने आ। गुरु ग्रंथ साहिब दी विचारधारा ने उन्हां लोकां नूं झंझोड़िया। पहली गल इत्थे दो गल्लां ने, एक तीर्थ ते नहाउण वाले ते दूजे पितरां नूं पूजण वाले। आपां भाई साहिब भाई गुरदास जी उन्हां तों पुछिए भी जेड़े लोक जिउंदे जी मां बाप दा अदब नहीं करदे ते मरण तो बाद पितरां नूं पानी देंदे ने, भाई गुरदास जी तुहाडे कोल गुरु नानक जी दे घर दी विचारधारा है, दसो उन्हां बारे तुहाडा की ख्याल? भाई गुरदास जी दी वार नंबर 37 ते पौड़ी नंबर 12 ते 13 ध्यान रखना। भाई गुरदास जी कहिंदे ने ऐ मनुख ए माया किन्नी प्रभावशाली है, जिदन तेरा जन्म होया रब दा भाणा उदन वापरिया। वैसे असी भाणा अखर जेड़ा है ना इनू दुखांत नाल जोड़ दिता है, ध्यान देना। असी कई बारी भाणे अखर नू दुखांत नाल जोड़ने आ, कोई काम बिगड़ जाए, कोई मर जाए, किसे नू सट लग जाए, असी कहने भाणा वापरिया है। मौत होवे ते कहने भाणा वापरिया है, ते जदों जन्म होवे ते कोई नहीं जे कहिंदा इन्हां दे घर रब दा भाणा वापरिया है। असल भी जिदन बच्चा जमदा उदन भी भाणा ही वापरदा है। आ एक शब्द हुंदा है आनंद साहिब विच, जां तिस भाणा तां जमिया परिवार भला पाया। कहिंदे जां तिस भाणा तां जमिया, जिदन तेनू रब जी पाया उदन जीव दा जन्म होया। ध्यान रखना कुछ अखर ऐसे ने, जिवें हुण एक अखर है जलूस, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਲੂਸ ਅੱਖਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਲੋ ਤੋਂ ਜਲੂਸ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਜਲੂਸ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ ਬਕਣਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਕਣਾ ਅੱਖਰ ਬਕਵਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਕਣਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨੀ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸ਼ੋਂ ਦੇਵਾ ਜੋਰ ਚਰਨ ਗਹੂੰ, ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਬਕੋ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਾਂ, ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜਾਂ। ਚਰਨ ਗਹੂੰ ਬਕੂ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ, ਦੀਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ ਅਕੋਰ ਦਰ ਤੇ ਭੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਜੰਮਿਆ ਸੋ ਉਦਨ ਮਾਇਆ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਵਿਚੋਂ ਗਰਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਖਤਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਭਲਿਆ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰਲੇ ਜਿਹਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਜੰਮਿਆ ਸੈ ਉਦਨ ਸਾਈ ਵਿਛਰਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਦਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨੀ ਟੁੱਕਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਣ ਕਾਮਣੇ ਆਰੀਏ, ਕੀਤੋ ਕਾਮਣ ਕੰਤ ਪਿਆਰੇ, ਨੀ ਤੂਣੇ ਹਾਰੀਏ ਇਸਤਰੀਏ। ਤੂੰ ਕਾਮਣ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਪਤੀ ਤੇ ਟੂਣਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਮੇ ਸਾਈ ਵਿਛਰਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਗਾਇਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ
1: ਸਕਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਮੀ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸੰਕਟ ਸਹਿਵਾਨ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਬਣਾਏ ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ।
2: ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਯੋਗਾਦ ਸੱਚ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ خوشی پی سچ جیتا سمند ساگر نیر پریا تیتے اوگن خمارے دیا کرو کچھ مہر اپاو ڈوب دے پتھر تارے جیڑا اگن برابر تپے

सुख हुआ दिन राती, कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई, माटी का क्या तुप स्वामी, मानस की गत एक, ना खो जती सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म भया, परणवत नानक तिनकी शरणा, परणवत नानक तिनकी शरणा, जिन तू नाही विसरया, परम सम्मान योग चवर शतर तख दे मालक, जुगह जुग अटल साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाई मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे

पिछले दिना तो आरंभ की थी खोई खै, कल इस लड़ी नू इत्थे समाप्त कीता सी कि उस परम पिता परमेश्वर वाहिगुरु जी ने हर एक जो वस्तु इस संसार विच पैदा कीती है उसनू किसे मर्यादा, किसे नेम, किसे दायरे दे अंदर अपने हुक्म दे विच टिकाया होया है। ते जदों उस परमेश्वर दी बनी हुई ए दात मर्यादा भी चले ते जीवन नू सुख देंदी है, ते जदों आप खुदरापन करे ते उदों मनुख दे जीवन लई भी दुखदाई बन जांदी। जिवें उदाहरण दे तौर ते जे तां अग चुल्हे विच बलदी होवे ते चुल्हे विच बलदी हुई अग मनुख दे पेट दी भुख नू दूर करदी है। देखो ओ किसे मर्यादा दे अंदर, किसे नियम दे अधीन, किसे दायरे दे अधीन आउंदी है तां उस दा बलना मर्यादा विच मनुख दे जीवन नू सुख देंदा है, ते ओही अग किते बेमर्यादा हो के चल पवे ते घर नू साड़ के राख भी कर सकदी है। ओही पानी है जिस दे पीण दे नाल मनुख नू जिंदगी मिलदी है। जेकर ओ पानी किसे मर्यादा दे अधीन आवे तां मनुख दे तन नू शुद्धि देंदा है, इहदे अंदर दी प्यास बुझांदा है, ते इह पानी जदों खड़ दा रूप धारण करके बेतरतीबा बेमर्यादा खुला हो के चलदा है ते कई वारी शहरां दे शहर रोड़ के अपने नाल लै जांदा है। मेरे कहण तो मुराद कि हर धरती विच मर्यादा विच चलण वाली वस्तु जिंदगी लई सुखदाई है, ते बेमर्यादा बेतरतीबी कोई कोई भी चीज जो है वो जिंदगी लई दुखदाई बन जांदी। आओ कल आपां विचार कीती सी कि हर चीज बाहर दी किसे रहत किसे मर्यादा दे अधीन है। अज सतगुरु जी दी बख्शी हुई अंतरीव रहत गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ते आधारित ते और जो सानू बाहरों कृपा करके रहत दी दात दित्ती है, इस संबंधी गुरु कृपा दे नाल आपां विचार करांगे। आप समूह माई भाई गुरसिख संगत दे चरणां विच बेनती है कि एकाग्रता दी दात बख्शनी और सारे रल के अरदास करिए। हे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब कृपालु जी, आप कृपा करो साडे अंदर नू टिका एकाग्रता ते अंदर दे फुरने शांत कर नरोल अपने गुरु शब्द दी विचार करन दी और सुन दी दात बख्शो। करो कृपा साध संगत जी, विचार आरंभन तो पहला गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी दे विच जदों भी जगयासू ने सतगुरु दे चरणां विच बेनती करके प्रभु दे घर दा वाहिगुरु जी दे घर दा मार्ग पुछिया है, ते उस वेले जितने भी शब्द तुसीं पढ़ लवो मेरे सतगुरु ने हर एक जगयासू नूं उत्तर केवल एक ही दिता है। जदों असीं पढ़ने आ मेरे साहिब दे अमृत बचन ते अपने आप नूं अत दी निम्रता विच लिया के बेनती करदे ने, हे सतगुरु के साडे कोल ज्ञान दे चक्षु नहीं, साडे कोल ज्ञान दे नेत्र नहीं, एक कृपा करके दसो खां कि असीं अखां तो हीणे आ, ते मैं बेनती करा इन्हां दो अखां दी गल नहीं, साडे कोल अंदर ज्ञान दे दीदे नहीं, ते मालक जी जे सतगुरु दा लड़ पकड़ना होवे

शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसारे खोवे गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख धोवे सो कहो तल गुर सेविए एहन सहज सुभाए

जो नाल मेरे सज्जन गया उन्हें अनुवाद करके दसिया कहण लगे शेक्सपीयर दे बोल ने जिन्हों अनेक जबाना इत्थे बार लिखा गया जिहदा अनुवाद है पार्लीमेंट हाउस के बाहर ए बोल ऐ बोलन वाले हो सकता है मैं तेरे नाल सहमत ना होवां ऐ बोलन वाले हो सकता है मैं तेरे नाल सहमत ना होवां पर मैं अपनी जान दे देंगा अगर तैनू किसी ने बोलन तो रोकया ये बोल लिखे हुए ने ये लफ्ज लिखे हुए तो मैं इसनू पढ़ के सारा दिन रटदा रहा ऐ बोलन वाले हो सकता है मैं तेरे नाल सहमत ना होवां पर मैं अपनी जान दे देंगा अगर तैनू किसी ने बोलन तो रोकया धर्म का फल की है स्वतंत्रता मोक्ष ते मुक्ति का मतलब की है बोलन की आजादी उत्थे पूर्ण तौर पर दे दी गई है और इतनी खुल एक होर भी मैं गल दसा अंग्रेजा की गलत नजर ते साडे देश दे सियासतदाना ने कर ली है उस ढंग की पार्लीमेंट हाउस भी बना लिया एम पी भी बन गए ने पर खिमा करनी उन्हां वर्गा दिल ते दिमाग कितों लियाणगे हाइड पार्क में देखिए इस तरह के चार पांच माइक्रोफोन लगे हुए ते अगों काफी कुर्सियां भी सन पर गजब की गल है कि स्टेज पर कोई वक्ता नहीं बोलने वाला नहीं से ते स्रोते दो चार जरूर थे सन ते नाल दा साथी मैं पार्क दिखाण लिया तो मैं उस तो पूछ लिया मैं कि माइक्रोफोन बड़े सजा के रखे हुए ने स्टेज पर स्टेज भी बड़ी सजाई हुई है स्रोते भी चार पांच बैठे ने बोलने वाला कोई एक ही है इतने मैंने लगे ये बरतानिया गौरमेंट की तरफों इंतजाम किया होया माइक्रोफोन उन्होंने तरफों लगे हुए जिस किसी बंदे ने गौरमेंट के खिलाफ बोलना है किसी मिनिस्टर के खिलाफ बोलना है किसी ऑफिसर के खिलाफ बोलना है या किसी थां ते उसके कोई किसी अफसर ते मिनिस्टर ने उसके ते वधीकी की है तो वह अदालत विच नहीं जा सकता पैसे नहीं खर्च कर सकता उसके कोल समय नहीं तो वह इत्थे आके बोले उसके बोल पहुंचणगे उस ते अमल होवेगा आ जद मैं सिलसिला देखिया तो मैं आशस कर उठा हदों भी इतनी स्वतंत्रता इतनी गल क्षमा करनी इस देश देश से मैं हूं घूम करके जो देखिया कि एक तो इतने के दरियावान के कंडे से बन कोई नहीं ना तो राजनीति के आले दुआले भी कोई बनेरा कोई नहीं इत्थे दे दरिया जद हड़ ते आंदे ने शहरां नूं रोड़ छड़दे ने इत्थों दी राजनीति जद हड़ ते आउंदी है अकाल तख्त नूं रोड़ के लै जांदी है और ये हजारां बंदियां नूं अपने थले लिताड़ के जो है लंघ जांदी है बेकाबू राजनीति बिल्कुल बेकाबू और गजब की गल यह है कि इतने यह भी आखण की इजाजत नहीं कि इतने दरिया हड़ ते आया खेतियां डुब गई पिंड गर्क हो गए शहर तबाह हो गए यह भी किसी को इजाजत नहीं किसी वक्त इस तरह के संकीर्ण माहौल नूं वेख के डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा कि ये कैसा जुबान बंदी है तेरी महफिल में यहां तो बात करने को तरसती है जुबान मेरी इतने तो साड़ी जुबान तरस गई गल करन जिड़ा गल करे उस ते एनएसए ला दो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ला दो और झूठ चारों पासे पनपो आया झूठ को सारे साधन गजब की गले मौजूदा राजनीतिक दे मुंह विच झूठ ते हाथ दे च बंदूक इंज झूठ चलता है हाथ दे च बंदूक है।